हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों धड़े कर है से जाहे, झूठ धड़े कर पछोताहे, थिर ना रह मन खोट कमा।

0: पंच चोर झगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बधाए जिस नो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा भाव धड़े बह पावै प्राया छिदर अटकलै अपना अहंकार बधावै जैसा बीजै तैसा खावै जन नानक का हर धड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिन आवै आसा महला चौथा।
1: जिहड़ा इत्थे पाठ आया सी थोड़ा जिहा अटक लै इदां कर लेना अटकलै पाठ नहीं करना अटक लै थोड़ा फर्क पा के। हाँ जी
2: अटक लै अटक वखरा लै मखरा कर
0: मिथ्या दूजा भाओ धड़े बह पावै प्राया छिदर।

मन राम समारै कब को लोगन कौ पतियावै लोक पतिणै ना पत होए जन नानक हर हिरदय साद त्यावहु ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचहु हर हर त्याए ऐसे ऐसे संत मिला है मेरे।

सिमरत हर हर भगवान आ सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावहो री माई हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकाओ जैसे कर हल बेल रिझाई रहाओ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रह ना जाई राख सरन जगदीश्वर प्यारे मोहे सरदापूर हर गोसाई जन नानक कै मन अनद होत है

विष्टा असत रखत परेटे चाम इस ऊपर ले राखियो गुमान एक वस्त बुझ है एक वस्त बुझ है ता हुवह पाक बिन बुझे तू सदा ना पाक कहो नानक गुर कौ कुरबान जिस ते पाइए हर पुरख सुजान आसा महला पंजवा एक तुके चौ पदे एक घड़ी दिनस मोह कौ बहुत दिहारे मन ना रहै कैसे मिलो प्यारे एक पल दिनस मोह कौ कबहू ना बिहावै दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोह कौ प्रह मिलावै रहाओ चार पहर चहो जुग है समाने रहन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल पिरहो बेछोड़ी ब्रह्म ब्रह्म रोवै हाथ पछोड़ी जन नानक कहो हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया आसा महला पंजवा हर सेवा मह परम निधान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी संग सखाई दुख सुख सिमरी तह मौजूद जम

ना बाला बूढ़ा भाई रहाओ, ओह ना बाला बूढ़ा भाई रहाओ, नानक दास साध सरनाई गुर प्रसाद पाओ पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म प्रगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, सीतल सांत सदा सुख पाव है, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ, कहो नानक सीतल सांत सदा सुख पाव है, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ, कहो नानक जा के पूर्ण कर्म सतगुर भेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे घर के चौतीस आसा महला पंजवा, जा का हर स्वामी प्रभ बेली पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ, कर कृपा चरण संग मेली सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक भई अमोली, आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मतसर ए खेल सब जुए हारे, काम क्रोध माया मद मतसर ए खेलत सब जुए हारे, सत संतोख दया धर्म सच एह अपने गृह भीतर बारे, जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल, गुर पूरै लै खिन मह तारे रहाओ, सब की रेन होए रहे मनुआ सगले दिस है मीत प्यारे, सब मदे रव्या मेरा ठाकुर सब मदे रव्या मेरा ठाकुर, दान देत सब जीव सुमारे, एको एक आप एक एक है, एको एक आप एक एक है, एक है सगला पासारे, जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे, गहर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किश पारा बारे, तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभ कहो नमस्कारे, आसा महला पंजवा तू बेअंत अवगत अगोचर एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करह चतुराई जा सब किश तुझे मझार, मेरे सत गुर अपने बालक राख हो लीला धार, देह सुमत सदा गुण गावा मेरे ठाकुर अगम अपार रहाओ, जैसे जैसे जनन जठर मह प्राणी ओह रहता नाम आधार, आनंद करे सास सास सुमारे ना पूह अगनार, पर धन पर दारा पर निंदा इन सो प्रीत निवार, चरण कमल सेवी रिद अंतर गुर पूरे कै आधार, गृह मंदिर महल।

0: नाम मित्र सत्र जाके एक समान है प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग काटन हारा दुख दूर करन जीव के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपुरी संति छली ताका संग बच है सुरदेव अमोग दर्स सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहर दीजे गुणतास
1: पाठ पहला जेड़ा पिछला सी ना कौला बपरी संति शली ये शांति हो गया सी शशे नाल संति शली सही है ध्यान रखना। हाँ जी भाई
0: सूर बीर

0: संगी साध चित्र गुपत सब लिखते लेखा भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा कहो नानक जैस सतगुर पूरा बाजे ता कै अनहद तूरा आसा महला पंजवा दुपदा एक साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बोझ गई तृष्णा हर जस है अगाने जप जप जीवा सारग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर परे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ताकि परम गत होए आसा घर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित त्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन है आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजह संत हर पीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या पिर की लागी सौकन घर की कंत त्यागी प्रिय सोहागन सीगार करी मन मेरे की तपत हरी भलो भयो प्रे कहया मानया सुख सहज इस घर का जानया रहाओ हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए भाग गए पंच दूत लावे ना मैं कुल ना शोभावंत ना मैं कुल ना शोभावंत क्या जाना क्यों भानी कंत मोहे अनाथ गरीब निमानी
1: इत्थे पाठ आया भानी भानी नहीं कहना इनू पोला बोलना भानी भाणा जी पा जानी
0: क्या जाना क्यों भानी कंत क्या जाना क्यों भानी कंत मोहे अनाथ गरीब निमानी कंत पाकर हम कीनी रानी जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा धन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुण तासा आसा महला पंजवा माथे त्रिकुटी दृष्ट करूर बोलै कौड़ा जिह बा की फूड सदा भूखी पिर जाने दूर ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा बिसन महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ भवे सब धरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोह सबो जग बाधा होमै पचै मनमुख मूह राखा गुर नानक बाहा पकर हम राखा आसा महला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरहै सुआमी ईहा ऊहा काम ना प्राणी संत त्रिपतासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए कर कृपा अपने नाए लाए सर्ब सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ
2: ਇੱਥੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਏ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਐੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ
0: ਸੰਗ ਹੋਵਤ ਕਹੋ ਜਾਨਤ ਦੂਰ ਸੋ ਜਨ ਮਰਤਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਝੂਰ ਸੋ ਜਨ ਮਰਤਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਝੂਰ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਤਿਸ ਚਿਤ ਵਤ ਨਾਹੇ ਮਹਾਂ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਦਿਨ ਰੈਨ ਜਾਹੇ कहो नानक प्रभ सिमरहो एक गत पाइय गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया नाम जपत मन तन सब हरिया कलमल दोख सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रह मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वस गत आया ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਉਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗਾਵ ਲੇਹ ਤੂੰ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਾਪੀਐ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਵਾਸੀਐ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕਾ ਦਾਨ ਨਿਖੂਟੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕਾ ਦਾਨ ਨਿਖੂਟੈ ਨਾਹੀ ਭਲੀ ਭਾਤ ਸਭ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੀ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਮਨ ਵਾਸਾਈਐ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਨਾ ਝੂਰਨ ਓਟ ਗਹੀ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿਧ ਗਾਈਐ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਤਹੂ ਜਾਈਐ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਤਹੂ ਜਾਈਐ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾ ਹਰ ਹਰ ਪਾਈਐ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹੋਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਮੰਗ

काफी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं बंदा बै खरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान ने माने तू धनी तेरा परभाषा बिन साचे अन टेक है सो जान हो काचा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गोर पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम ना आईऐ तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाईऐ जे लख कर्म कमाईऐ है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं भालिया हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाईऐ सच साहिब सोई बलिहारी गुरे अपने साध साध कुरबाना नाम ना विसराओ एक खिन चसा नाम ना विसराओ एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिस हार धन अंतर सो छूटै महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत सर ओह आद जुगादी जुग है जुग पूरा परमेसर नाम त्यावो साध सदा हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे आसा महला पंजवा साई अलख अपार भोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै हौ मंजा कुरबान साई अपने होवै अनद घना मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेद कदेब संसार हब्बा हूं बाहरा नानक का पात

टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ सदा सहाय संत पेख सदा हजूर नाम बिहुनड़िया से मरन बेसूर बेसूर दास दासतन पाए दास दासतन पाए दास दासतन पाए दास दासतन पाए मिटिया तिना गौण दास दासतन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे

0: मन तन अर्प धर आठ पहर सा लाहे सिरजन हार तू जीवा तेरी दात कृपा करहो मूं रहाओ सोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जिस तू देहला जो ना ढहंदो मूल सो कर रास कर हिको चित बसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रभ भाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक बखाणिया।
1: ये जड़ा पाठ आया सी सोई लगे सच जिस नूं देह आला ये जड़ा सानू संथिया विच पाठ वख वख ही करवाया सी पर इत्थे हुण इन्हां ने कट्ठा ही छापिया होया इहदा अर्थ बणदा अल्लाह अल्लाह परमेश्वर नूं मुसलमान कहिंदे आ जिस नूं अल्लाह देवे इहदा अर्थ ही बणदा। जे आपां इहनूं पोला भी बोलदे हां देह अला अला दा अर्थ हुंदा प्यारा इह परमेश्वर नूं प्यारा भी आख्या जांदा। इह पाठ मुख पाठ देह अला इहनूं वख वख ही करना है अला प्यारा ते मुसलमान अला परमेश्वर नूं भी कह दिंदे आ जे आपां पोला भी बोलदे हां अर्थ इहदा परमेश्वर ही बणना है। देह अला हाँ जी दूजा एक कई बारी जदों महापुरख विद्यार्थियों पढ़ाते सन तो हूँ कई बारी वैसे तो लड़ीवार स्वरूप भी उदों होंदे सी भाग भी लड़ीवार ही होंदे सी फिर जिवें उस्ताद संथ्या करवाउंदे सी उवें फिर वह याद करनी पैंदी सी। हुण इह पदसेध भाग ते पोथियां सरूप छप गए ने ते इहदे विच हुण जिहड़े विद्वान कह दिओ जां लिखारी कह दिओ जां प्रेस दा स्टाफ उहनां ने अपनी मर्जी नाल ही पदसेध कीता होया ते पर जदों आपां गुरबाणी दे अर्थां नूं विचारांगे फिर शुद्धि अशुद्धि दा पता लगदा हुंदा वी किहड़ा पाठ शुद्ध है ते बोलण नूं तां जिहड़ा मर्जी बोल देईए ते देह आहे नूं सिहारी है इकट्ठा बोलना भी औखा ते इकट्ठा इहदा अर्थ वी नहीं बणदा सही।
2: हांजी व्याकरण भी इही कहिंदी है सिहारी आ गई आहे नूं इहनूं निषेध ही करना पैणा।
1: हांजी दूजा पाठ तुसीं ओह इकट्ठा कर लो मुख पाठ देह अला इहनूं वखरा वखरा ही समझना छपिया भी वखरा ही सी। हांजी
0: सोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जिस तू देह अला सोई लगे सच जिस तू देह अला जो न ढहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाए कदे न जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रभ भाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक बखाणिया।
1: एक मैं होर बेनती कर देवां ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਬੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰ ਹਿੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਪਾਠ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੱਬੇ ਹੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ
2: ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ

0: ब्रह्म फिर दुख ना थिया आसा घर नावा महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद चितवाओ चितव सर्ब सुख पावाओ आगे पावाओ के ना पावाओ एक दातार सगल है जाचिक दूसर कै पह जावाओ हौ मांगाओ आन ल जावाओ सगल शतरपत एको ठाकुर कौन समसर लावाओ रहाओ उठाओ बैसाओ रह पे ना साकाओ दर्शन खोज खो जावाओ ब्रह्मादिक सनकादिक
1: भी उसे तरह ब्रह्मादिक
0: ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक
1: मैं बेनती कर दिया भाई ये ना याद रह जाएगा थोड़े तो सारे दे आदिक शब्द बोलते आप आद नू वड्डा करके आदक भी ये चीजा दो चार गणिया ते कह देता आदक इंग्लिश बिच एटक शब्द वरतदे हैं उसे तरह यह ब्रह्मा आदक है वैसे जब आप अर्थ पर जाना हो सन कादिक सो इनू बोलना है ब्रह्मादिक दद्दे दी सियारी बोल के जी पढ़ दियो
0: ब्रह्मादिक सन कादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तेन काओ महल दुलभावाओ
1: हाँ जी विश्राम शुद्ध लगे है सनत कुमार ते पूरा विश्राम है ते जम की सनक ते बन दिया जी हाँ जी सनक दी बनी है
2: ब्रह्मादक सनकादक इथे
1: इथे जम की आ गई जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
2: इथे बड़ा विश्राम
1: विश्राम कुमार ते जाके जी सनत कुमार इकट्ठा है जी
0: अगम अगम आगाध बोध कीमत परै ना पावाओ ताकि सरन सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावाओ भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावाओ कहो नानक जाओ साध संग पायो तौ फिर जन्म ना आवाओ
2: इत्थे भी पाठ आया सी ताकि सरन सत पुरख की ताकि कस के बोलना
1: कई थावां ते आउणा जी पाठ है ताकि ਜਿਵੇਂ ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਵੇਗਾ
2: ਤਾਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਤਾਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕੀ ਸਾਰਨ ਸਤਪੁਰਖ ਕੀ ਹਾਂਜੀ

0: गावो, दुखन गावो, सुख भी गावो, मार्ग पंथ समारी, नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी, नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी, दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रसनारी, सत संगत मह विसास होए, हर जीवत मर्द संगारी, जन नानक कहो एहो दान देहो प्रभ, पावो संत रेन उर धारी, श्रवणी कथा नैन दर्श पेखाओ, मस्तक गुर चरनारी।
1: एक रुकियो जी, गावो शब्द आया जेड़ा तीन बारी आ गया, वैसे इको पंक्ति विच मैं सिर्फ आपका ध्यान दबाउणा है ताकि याद रह जाण इह गल्लां। जदों ऊड़े नौ औंकड़ नाल गावो शब्द आउंदा गुरबाणी विच, उहदा भाव हुंदा वी मैं गाउंदा हाँ, जग्यासू रूप दे विच, गुरु साहिब भी कई थावां ते कहिंदे ने किसी भी रूप दे विच। ते जदों इह गावो हाहे नूं औंकड़ नाल आउंदा, फिर इह उपदेश बण जांदा संगत नूं, सिखां नूं प्रेरणा कीती हुंदी है उत्थे गाउण दी। इस तरह भी ध्यान विच रख लैणा। चलो जी,
0: एक ओहकार सतगुर प्रसाद, आसा घर दसवा महला पंजवा, जिस नो तू आस थिर कर मन है, ते पाहन दो दाहा, पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समग्री, सब मिथ्या असनाहा, रे मन क्या करह है हा हा, दृष्ट देख
2: इन भी थोड़ा जा वैसे इन्होंने कट्ठा लिखिया हा हा, इन उच्चारण सही है
0: सत,
2: रे मन क्या करह है हा हा, भी हाय हाय क्यों करदा, इहदा अर्थ
1: बिल्कुल जी यही बनता जी,
0: रे मन क्या करह है हा हा, रे मन क्या करह है हा हा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी, एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उड़ाने, दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक धाइय अंत ओर को आहा, जैसे अंभ कुंड कर राख्यो, परत सिंध गल जाहा, आवग आग्या पार भ्रम की, उठ जासी मोहत चसाहा, रे मन लेखै चल है, लेखै बैस है, लेखै लेंदा साहा, सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण ओट आहा, आसा महला पंजवा, अपुष्ट बात ते भई सीधुरी, दूत दुष्ट सजनई, अंधकार मह रतन प्रगासियो, मलीन बुद्ध हशनई, जाओ कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ।
2: ये जड़ा मगरला पाठ है ना, ये चाल वास्ते उवें को एक राशि ते एक समान ही उच्चारण करना है, ते इस वास्ते सजनई भई मिलई अगे भी इसी तरह उच्चारण कर दी जाना।
1: हाँ जी, जिस तरह बाबा जी ने कहा, भाई जी ने भी चाल मुताबक कविता दे विच चाल प्रधान हुंदी है, ते गुरबाणी काव्यक रूप है, ते बहुत थावां ते इस तरह पाठ चाल मुताबक करने हुंदे ने। ये नहीं भी हर पाठ अर्थ मुताबक ही होना है, कई थावां ते चाल प्रधान हुंदी है छंद दे अनुसार, ते उत्थे इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना है। बिल्कुल जो कहा गया उते नोट करियो जी।
0: रहाओ मोहे किरपन कौ कोई न जानत, सगल भवन प्रगटई, संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई, आड़ आड़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तिसन बुझ गई, एक बोल पी खवतो नाही, साध संगत सीत लई, एक जी गुण कवन बखाना, अगम अगम अगमई, दास दास दास को करिया हो जन नानक हर सरनाई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे काओ तू ढीला ढीला तोटे काओ बेग ताया सस्त वखर तू किन्नह नाही पापी बादा रे नाया सतगुर तेरी आस आया पतत पावन तेरो नाम पार बहम मैं एहा ओट आया रहाव गंधन बैन सुनह उरझावह नाम लैत अलकाया नेंद चिंद कौ बहुत उमाहयो बूझी उलटाया पर धन पर तन पर ती निंदा अखाद खाहे हरकाया साज धर्म स्यों रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बाधे जह जानो सो चीत न आवै अहम जो जह जानो सो चीत न आवै अहम बुद्ध भय आंदे
2: अहम अंदर नूं थोड़ी जी आवाज खिंचनी है
0: जह जानो सो चीत न आवै अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अराधे।

पालखिन चीजै अर जादे जैसे मीठे साध लोभाए झूठ धंद दुर्गादे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप भारी पुरख बिधाता बहुर बहुर जन्मादे जाओ भयो कृपाल दीन दुख भंजन तौ गुर मिल सब सब सुख लादे कहो नानक दिन रहन त्यावाओ मार काढ़ी सगल उपादे इउं जप्यो भाई पुरख बिधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन

प्रभु भावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवे। आसा कर ग्यारवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नटुआ पीख दिखावे बोह बिद, जैसा है ओह तैसा रे। अनेक जोत प्रम्यो प्रम पीतर, अनेक जोन प्रम्यो प्रम पीतर, सुख है नाही परवेसा रे। साजन संत हमारे बीता, बिन हर हर आनीता रे। साध संग मिल हर गुण गाय, इह जन्म पदार्थ जीता रे। रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की किन्नी, कहो कवन विद तरिय रे। कुमन केर अगाह गाखरी, गुर सबदी पार उतरिय रे। खोजत खोजत खोज बिचारियो, तत नानक इहो जाना रे। सिमरत नाम निधान निर्मोलक।

तिस ते तुझ है डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तब अब रह चीत न पावो रे। नानक दास प्रभ आप पहराया भ्रम पौ मीट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दन खट दर्शन कर तली रे। सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोहली रे। जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार विदार गुदारी सो पूरा ए कली रे। रहाओ वडी कोम बस भाग नाही।

हलत पलत सहाय संगी एक सौ लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्याव है तरण कौ संसार, कर्म धर्म अनेक क्रिया सब ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसे मिले सतगुरुदेव, नाम दृढ़ कर भगत हर की भली।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज चेती मन वजिया वाधाइया।

बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका।

गुरपुरा पेटियो वडभागी, मन है पया प्रकाशा, कोई न पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का परवासा, गुरपुरा पेटियो वडभागी, मन है पया प्रकाशा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर का बलहार, अगे सुख पाचे सुख सहजा, कर आनंद हमारा, रहाओ अंतर्जामी करने हारा, सोई खसम मारा।

सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभाव हैप्पी होवन हारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वडी वड्याई अचज सोबा कारज आया रसे

तेग देग तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे

आहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए सुवस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे हुवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा।

कहन कतिबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखी गए लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे इति सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह। पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तोलना होवनी जे ते समन होना वी सरह अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए। वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जूद अपार केते आगणत नहीं विचार केते खप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाण होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बख्से सिफत सालाह। नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुल अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लेव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वखियान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे हे ता आख ना सकह केई के जेवड भावै तेवड होए। नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार। सो दार के हा सो घर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे। केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पावन पानी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे। गावह चित गुपत लेख जान है लेख लेख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवते आधार नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले। गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे। गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती। कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई।
मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान के करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मान जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध

जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरा चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापै जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रचयो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग नारंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि बहुचित मद भार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अन भव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भर नाडय अन दंड बाडय चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर माने आए चतर चक्कर दाने आए चाचरी छंद न सत्तरै न मित्रै न परमंग न पितरै न करमंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्तरै न मित्रै परे है पवित्रै पृथ्वी सै आदि सै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ शोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर माने आए के सर्वतर दाने आए के सर्वतर गौना है के सर्वतर पावना है के सर्वतर देसा के सर्वतर पेशा के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर कालय के सर्वतर पालय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजय के सर्वतर राजय के सर्वतर सोखय के सर्वतर पोखय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसय के सर्वतर पेशय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भानय के सर्वतर मानय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय
बिलंदुल मकानै जमीन उल जमानै तमीज उल तमामै रुजूअल निदानै हरीफ उल अजीमै रजायक यकीनै अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरुकत स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहिस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद पार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खाल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आज जिना बात अन झंझ गात अन रंज बात
आन टोट पंडार आन थट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंकार है सर्व पास्या है सर्वनाश्या है करुणाकर है विश्वंग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खालखंडस है पारते पार है करुणाकार है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हरता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजंग पर्यात शांद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सत्रं परनासी करी मुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करी मुल रहीमे चतर चक्र वर्ते चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दीसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੂਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤਿਮ ਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚੱਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਭਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦੇਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਡ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਧਪ ਜਾਉਣ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹਾਉ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ਕੋ ਭੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੋ ਭੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜੂ ਕਰੀਆ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀ ਆਤਮਾ ਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀ ਅਹੋ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵ ਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਵਧ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ
संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना, घाट घाट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत, तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ। तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनादि असंब, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जा को भेव न पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत, भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखाना जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज किनी, उत भुज खान बहुर रच दिनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अबरछा मेरी तुम करो। सिखे उबार असिखे संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट

काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छाह छुवै।

सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी। सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घरता तेरा है सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया। कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया। कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै पावै ता सो जन देहे जिस नो होर क्या कर है वेचारिया। एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे। कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जान पावे। आवहो संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ। तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्या पाईऐ। हुकम मन्यो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती। जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तूजे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै। जित अंत पछोताईऐ सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा। क्या को आख वखान ए आखह ता वेखह सब तू है जिन जगत उपाया। कहै नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका सत गुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार ताज त्रिसना बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी। कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।
ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिवै चलहै जिन्ना मार्ग पाव हे कर कृपा। जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारै सुख पाव हे। कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली किनै ना पाया। कहै नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया। पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विन सहजै सहसा ना जाए। न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन धोवहो शब्द लाग हो हर स्यो रह हो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए। जी आहो मैले बहरहु निर्मल बहरहु निर्मल। जी आहो ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनहु विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहै नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जी आहो निर्मल बहरहु निर्मल बहरहु ता निर्मल। जी आहो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ के सोए पहुँचै नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई। जिया हो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रह परनै गुर बिन अवर ना जाने कोए। कहै नानक सुनहो संत हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सत गुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई। पुछो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै। बिन सत गुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए। लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए। कहै नानक विचार देखहो बिन सत गुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो। आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो। गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपिहो सारिग पाणी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बज होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु बज होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया। भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कह करता आपे। हुक्म वरताए आप वेखै। गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै। मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै। एक सस्यो लिव लाए कहै नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी।
तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिन्हा हर मन वस्या बोला है अमृत बाणी कहै नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारिय मनहु क्यों विसारिय ए वड दाता जे अगन मह आहार पहुचावे ओसनो केहो पोहे ना सके।

तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई। नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से सत गुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए। साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी। सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वहो। साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख। कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन। नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना।

सो कहो टल गुर सेविया अहने सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

अंतर्गत होके सत्संग जी अपने नाम सुनना करना जी नाव चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन उथे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उथे सुन सकते हो जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ।

नानक जी उपाय कह लिखना मैं धर्म बहलिया उथे सचे ही सच निबड़े चुनवा कटे जजमा लिया थाओ ना पान कुड़ियार मोह काले दुजक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वाले आ।

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वड्डियां पागां वाले हो, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां लखां खुशियां होईयां ने, महाराज जीयां दी नजर होई है, लख खुशियां पातशाहियां जी सतगुर नजर करे, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। भाई गुरटेक सिंह जी, बीबी मनजीत कौर, तिना दी सपुत्री बीबी इच्छा कौर, भाई जसप्रीत सिंह जी अते बीबी राज कौर, तिना दे पचंगी भाई इमरनदीप सिंह दे आनंद कारज समागमां विच आप जी शामिल होने वास्ते पहुंचे हो। हुण आनंद कारज की रस्म प्रारंभ होवेगी। मैं बेनती करा सत्कारयोग भाई साहब जिया नूं, कीता लोड़िया काम सुहर पै आखीए शब्द का कीर्तन करनगे, उपरंत फिर महाराज जी के चरणों में छोटी अरदास करके फिर आनंद कारजां की प्रारंभता होगी।

एक शब्द समाप्ति ते जरूर पढ़ना, 5-7 मिनट अंदर वो पढ़ के फिर समाप्ति है जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के शकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां ते सवासां संग निभाही तिना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी बख्शो जी।

भुवन हारेवा। तंदारो वे मैल न धोवे सुपन अंतर संसारो। ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारो। आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए। नाम रते गुर पूरे राखे नानक सहज सुभाए। वड हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना। ई जग झूठ पसारोवा सच्चा कर सचड़ै सेविये सच खरा सच्यारोवा। कूड़ लब जा थाए ना पासी अगे लहे ना ठाओ। अंतर आओ ना बैस हो कहिए ज्यों सुंजे कर काओ। जमन मरन वडावे छोड़ा बिनसै जग सभाए। लब धंधे माया जगत भुलाया काल खड़ा रुआए। बाबा आव हो भाई हो गल मिल है मिल मिल दे आसीसा है। बाबा सचड़ा मेल ना चुकी प्रीतम किया दे आसीसा है। आसीसा देव हो भगत करेव हो मिलिया का क्या मेलो। एक भूले नाव हो थे हो थाव हो गुर शब्दी सच खेलो। जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाना जुग जुग सच है वैसे। साजन सैन मिलो संजोगी गुर मिल खुले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग मैं दुख सुख लेख लिखाया। लिख हड़ा साहा ना टले जेहड़ा पुरब कमाया। बह साचे लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा। कामण यारी कामण पाए बहुरंगी गल तागा। होछी मत पिया मन होछा गुड़ सा मक्खी खाया। ना मरजाद आया कल भीतर नांगो बंद चलाया। बाबा रोवो जे किसे रोवना जानियड़ा बंद पठाया है। लिखहड़ा लेख ना मेटी है दर हाकारड़ा आया है। हाकार

नानक जुग जुग जान से जाना रोव है सच समले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे शाहो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला नामा, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीना, कहो नानक हर भज मना, जिह बिद जल को मीना। बिखियन स्यों काही रचियो, निमख न हो उदास, कहो नानक पज हर मना, परे न जम की फास। तरना पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं, काल पहुँचो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजै भगवान। तन

अहंकार कहो नानक आपन तरै और न लेत उधार। ज्यों सुपना अर भिखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान।

ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगण संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग भैरो वह कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम भैरवी बेलावली पुन्या की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरो की पांचो नारी पंचम हरख दसाक सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बेलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापहे संग रागनी पांचो थापहे गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनासरी ए पाचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्तांग मेवारा परबल चंड कौशक ओ पारा खोखट ओ पौरा नंद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडौल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसी रीले भार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमा नंद भास्कर आई चंद्र बिमंगलन सुहाए सरसबान ओ आहि बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी काशेली पटमंजरी टोडी कही आलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कनरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावे पांचो संग ब्रंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर का

सब है पुत्र रागन के आठारे दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

प्रसाद जागदाता सोए भगत वछल तिहलोए जियो गुर शब्द समावहे अवर न जाने कोए जियो अवरो न जान है शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतूल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपास जियो सतगुर करै हर पै बेनती मेरी भैज रखो अरदास जियो भैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम नरिंजनो अंत चलद्या होए बेली जमदूत काल ने खंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कहे शबाश जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करै शबाश जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत।

0: सत्व की कृपा कर विछड़ियों ही याद होना अपने चरणा चिन्ह वाद बख्शन पिछे प्रभाव पाना बल का बल बख्शन और फतेह बुलाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

तिल फुल भेटावा प्रवान करनिया किरपा करनी देहो सजन असीसड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल किरपा करनी पातशाह जी ओ रहमत करनी परिवार नू चढ़दी कला बख्शनी अपना भाणा मनन दा बल बख्शिश करना किरपा करो इलाही हुक्म दी दात बख्शो हुक्म नामे मुताबक जीवन जाच बख्शो सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिलवो चह खोज शब्द में

पात साहो सिर साहां दे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जिसका तन मन धन सब तिसका

रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तैन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस।

तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक।

गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, जप तप सं

सब है करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, खूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू करियो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा।

चीनत नह पैव। आप आपुनी बुध है जेती, बरनत पैन पैन तुह तेती। तुमरा लखाना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जे रज सेतज कीनी, उत पुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई। एक बार दिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

अमृत शास्त्र वेद सब बौ भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो। दोहरा सगल द्वार